0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Jinke security forces kamyabi sa nishano banaye tabah kare chhadyo. Afghan Taliban ke dehshatgardan ji sarparasti band karn gurje. पाक फौज मुल्क की दिफा लाए हर दम चौकस आहे पांजे खुद मुख्तियारी ए सलामती लाए खतरो बणजंदड़ हर कार्रवाई के नाकाम बणायो वेंदो। भारत सां टकराव नथा चाहियूं पर पाणी रोकण के जंगी कदम समझो वेंदो। पाकिस्तान भारत के खबरदार करे छड्यो। इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे बाबत सेमिनार के खिताब कंदे नायब वजीर आजम इसहाक डार जो चवण हो तो भारत वट सिंतास मुआहदे के एक तरफो मुअतल करण जो को बे अख्तियार ना है। पाकिस्तान भारत सा टकराव नथो चाहे पर पानी रोकण के जंगी कदम समझो वेंदो। पाकिस्तान पंजन हकन ता हथ न खणदो।

0: अमन लाइ सरेंडर नथो करे सघे। सिंध तास मुआदे जो बरकरार रहण ज़रूरी आहे। सामूंडी रस्तनि ऐं आबी वसीलनि जो हथियार इस्तेमाल आलमी अमन लाइ ख़तरनाक आहे। इस्लामाबाद में सिंध तास मुआदे बाबति सेमिनार खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ चयो त सिंधु दरिया जो पाणी पाकिस्तान जी ज़िंदगी ज़मानत आहे। मुआदे जो तालुक़ कंहिं हिकु धुर सां नाहे। पाकिस्तान पाणी रोकण वारी कंहिं कोशिश जो भरपूर जवाब ॾींदो। सिंध तास मुआदे जे बहालीअ खां सवाइ भारत ऐं पाकिस्तान विच में जटादार अमन मुमकिन नाहे।
1: ईरान सां ॻाल्हियुनि लाइ अमरीका नुमाइंदा दोहा पहुतल, सालसन सां बि मुलाकात। कतरी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त अमरीकी नुमाइंदो स्टीव विटकॉफ ऐं जेड कुशनर दोहा में मौजूद आहिनि। संदन ईरानी अमलदारनि सां सिधी रीत मुलाकात न थींदी। ईरान जो को बि आला सतही नुमाइंदो कतर में मौजूद न आहे। अमरीकी नुमाइंदनि ट्रैकड़ीअ जो किरदार अदा कंदड़ धुरनि सां बि मुलाकातूं कंदा। ॻाल्हियुनि दौरान थींदड़ अगभराई ते ख़्यालनि जी ॾे वठि थींदी। तहरान जा मंजमंद कयल $6 अरब जा असासा बि अञा ईरान ॾांहुं मुंतकिल न आहिनि थिया।

अॼु दोहा में ईरानी वफ़द इकतरी साल सन सां मुलाक़ात जो इम्कान आहे। आबनाए हरूस में परडे॒ही मुदाख़लत मसइले खे वधीक ख़राब कंदी। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका सां थियल मुआदे ते अमल दरामद लाइ इकतरी साल सन सां ॻाल्हियूं थींदियूं। मुआदे जी पहिरीं शिक में लिबनान शामिल आहे। दोहा में ईंदड़ कुझु ॾींहनि दौरान अमरीकी वफ़द सां मुलाक़ात जो इम्कान नाहे। अमरीका सां राबतनि जा चैनल अक्सरी न पर सियासी आहिनि। हतमी मुआदे लाइ मफ़ामत अमल ज़रूरी आहे।

लाहौर के इलाके काहिना में ट्यूशन सेंटर की छि तकरीब पई 14 शागिर्द दबजी फौत केतरा ही जख्मी थी पाया कुछ की हालत गणती जोगी रेस्क्यू अमलदार मूजिब बारन की ट्यूशन पढ़ने दौरान वाक्य पेश आयो वजीर आजम शहबाज शरीफ पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो पारा अफसोस जो इजहार।

0: ये प्रोग्राम अलहुदा इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया गया। प्रोग्राम के हवाले से खत लिखने के लिए पता नोट कीजिए, अलहुदा इंटरनेशनल 41 DMMS, नियर चिल्ड्रन पार्क, सिराजुद्दौला रोड, कराची। फोन नंबर 02134547710, 03005187599।
1: हाँ, अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
2: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
3: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर.
1: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
4: GFM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज.
6: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: M. This transact is
1: plus account. भरोसा अतीत रिश्ता भरोसे का
2: GAFM नेटवर्क पर
3: ते दोहा में गालियों जारी जेडी है त वाशिंगटन कल सतह जो गालियों शेड्यूल मौजूद जारी आहिन तान बुनियादी ईरानी पार्लियामेंट जी स्पीकर बाकर कालिबाफ चयो आहे त मौजूदा मुलाकातनि जो मक़सद MOU तहत कयल वायदनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणाइण आहे। लुबनान जंग जे ख़ात्मे लाइ ईरान अमेरिका ऐं लुबनान जे गडि॒यल कमेटीअ ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अबनार मुर्ज़ असांजी ताक़त आहे। मिज़ाइल प्रोग्राम ऐं यूरेनियम वारे मामले ते को बि ठाह न कयो वेंदो।

0: चीनी परदेही वजीर वांग जे ऐं सऊदी हम मनसिब फैसल बिन फरहान जी बेजिंग में मुलाकात बिन तरफनि लाॻापन समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि कई। इजादे ते अमल दरामद करण ते रहियो चीनी परदेही वज़ीर लाइ सऊदीअ सां गॾिजी किरदार ऐं वज़ीर चयो त हुननि खे हथी पाक फ़ौज जो दुश्मन जे हर अगराईअ जो मुंहुं टोड़ जवाब ॾियण जो ऐलान। ISPR पारां सरहद पार खां बलूचिस्तान जी हदनि में चार ड्रोन मोकिलिया, जिन खे सिक्योरिटी फोर्सिस कामयाबीअ सां निशानो बणाए तबाह कयो। अफ़गान तालिबान खे दहशतगर्दी बंदि करणु घुर्जे, ख़ुदमुख़्तियारी ऐं सलामतीअ लाइ ख़तरो बणजंदड़ हर कार्रवाईअ खे नाकाम बणायो वेंदो। सिंधड़ीअ में पाणी खोड़ शिदत इख़्तियार करे वई, आबादगारनि जो मीरपुर ख़ासि रोड ते धरणो। घर होड़ शाख जी पुछड़ीअ में पाणी न पहुचण ख़िलाफ़ आबादगारनि सामारो स्टाफ वटि धरणो आयो। आबादगारनि चयो घर होड़ शाख जी पुछड़ीअ में 28 ॾींहनि खां पाणी नाहे पहुतो, आपाशी अमलो पाणी विकिरो करे रहियो आहे, बिना देर पाणी फराहम कयो वञे। ऐं पंडितनि वेझो पठाण फाटक भरिसां ट्रेन जी टकर में नौजवान फौत, सखर खां कराची वेंदड़ ट्रेन जी टकर में नौजवान करन पुट जाड़ो मल फौत थियो। कुंडरीअ में मोटरसाइकिल जो टकर लॻण सबब रोड जे किनारे सां बीठल नौजवान फौत, हादसे में रमज़ान आराई हयाती विञाए वेठो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट
2: आप सुन रहे थे
1: बाकी
2: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6
4: आवाज गीत आवाज GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: नक से बिस्मिल आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, प्रभात मटियारी F.6 सिंध जो आवाज।
2: धरती से जुड़ा है कलन शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेक्स्ट।

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे
1: तो आवाज गीत संगीत जो आवाज मटियारी FM 6 सिंध जो आवाज उदंदा रहो
2: सुबह की चाय हर पल ट्रेजेडी
3: ये सेट है
4: जी FM सबसे हिट है जी
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
6: उसी खिते की बनी है आवाज
5: GA FM नेटवर्क
6: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को चाहत से। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मीठी सी सिर से हंसी पर मुझे कहते हैं सही आप स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। आ रहे हैं पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपका मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा जो कि आज भी जारी सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में सबसे पहले वक्त की बात करेंगे। वक्त हुआ जाता है 11:20 पाकिस्तान

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, बातें जो हम आपसे करना चाहते हैं वो सारी बातें हम सब मिलकर करेंगे। लेकिन और शूट करेंगे प्रोग्राम में, प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में हम पहला गाना इंक्लूड रहे हैं, ज़ीशान करेंगे और वापस आ...

ओके जी, और इसी के साथ हम चलते हैं आगे. और इस वक्त हमारे पास एक बहुत स्पेशल डेडिकेशन है. इस वक्त हमें सुन रहे हैं जी नजीर धारी जो वहीद भायो और शमन भायो. ये लोग हमें सुन रहे हैं, नजीर धारी जो वहीद भायो और शमन भायो इस वक्त हमें सुन रहे हैं. और निगत नाज को भी सुनना चाहते हैं, तो इनको निगत नाज हम जरूर सुनवाएंगे. लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम नजीर धारे जो वहीद भाइयों और शमन भाइयों की रिक्वेस्ट को प्ले करेंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का सेंस वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-day ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन डॉट एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकत।

0: एहसास, चेहरे के दाग धब्बे, खील महासे और बेजान पन। अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-45-01-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
1: छा तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहियो था, जिते हो जे तहफुज, जदीद सहूलतूं ऐं मंजूर थियल सिक्योरिटी।
0: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में,
1: सखर शिकारपुर रोड ते,
0: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सामने,
1: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
0: एक शानदार ऐं काबिले एतमाद रिहायशी मंसूबो।
1: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर,
0: रिहायशी प्लॉट्स 80, 120, 150 गज जा,
1: ऐं कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज ऐं 600 गज।
0: हिते तव्हां खे मिलन थियूं जदीद सहूलतूं,
1: साफ मिठो पाणी,
0: बिजली, गैस,
1: 24 कलाक सिक्योरिटी,
0: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, हीउ मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे,
1: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौक़ो बणाए थो।
0: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
1: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
0: कॉन्टेक्ट
1: 0300-931-7252
0: एंड 0313-275-7860। हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर,
1: तव्हां जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बहितरीन इन्वेस्टमेंट जो बहितरीन इंतिखाब।
2: यार मां छा कयां, किथे वञा, घर में वेठो आहियां पर ठीक ही न आहियां, शायद मुझे जिंदगी लाइ का दवाई नाहे ठही।
3: छो भला, छा थियो आहे तोखे, साफ़ साफ़ ॿुधा मसलो छा आहे।
2: यार हिकु मसलो हुजे त ॿुधायां, मुंहिंजी त मसलनि जी कतार लॻल आहे, न बुख सही लॻे थी ऐं जे कुझु बि खावां थो त हज़म ई नथो थिए, पेट फूकजी वञे थो, हथ पेर सुन थी वञनि था ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी, कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां।
3: यार तुंहिंजा घणा न, बस हिकु ई मसलो
2: आहे। हिकु? इहो कीअं?
3: हा, तुंहिंजो मैदो ख़राबु आहे, छा तो न ॿुधो आहे, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी, न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी।
2: त पोइ मां छा कयां?
3: सवलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स, हे कुदरती जुज़नि मां तयारु कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुलु ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो, बुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट फूकजण ख़तम, सुस्ती ख़तम, जिस्म में ताक़त ईंदई।
2: वाह यार, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
3: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं, अल नूर दवाखाना रोड़ी, ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616। शिफ़ाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
4: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अवां जे शहर सखर में, मेदे जा मसला, गैस, बदहज़मी, कब्ज, खूनी ऐं बादी बवासीर, ज़नाना बीमार समेत ॿियनि मर्ज़नि जो इलाज करे रहियो आहे। रोज़ाना सुबुह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल। एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक, वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप, नज़द PSO पेट्रोल पंप, रेस कोर्स रोड सखर। राब्ते जे लाइ 0311-208-2600 ऐं 0333-7143-311।
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: वंस अगेन आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, जिसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 8881 पे। और इसके अलावा आप लोग कमेंट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जो कि आप कर भी रहे हैं जी पेज के ऊपर, तो कमेंट कीजिए और साथ साथ आप लोगों की लाइव कॉल्स को एंटरटेन करेंगे। तो लाइव कॉल्स आप लोगों की बहुत सारी, फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं
1: जी? मैं वकार से लड़काना देर सर, आपका शो सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार।
0: ओके, लग रहा है शो सुनने के लिए इंतजार में रहते हैं।
1: जी जी,
0: अरे वाह क्या बात। अच्छा तो ना सुनाएंगे?
1: जी सुनाएंगे, लेकिन आप ये तो सुनाएं आप कैसे हैं। मौला

0: शो करती हैं तो आने मिलते हैं।
1: पैसे कितने मिलते हैं वो तो हम बताते ही नहीं है किसी को, पता है सैलरी? सैलरी पूछना ना अच्छी बात नहीं होती।
0: नहीं नहीं, मैंने उसे कहा कि ये मेरा मोकाला मत कराओ,
1: है ना, बुरी बात होती है। सैलरी नहीं बताते, एक सैलरी और दूसरी एज नहीं पूछते।
0: ठीक है मौला, आपको शादा बात रखे, हम आपको गाना सुनाए रुखवार।
1: कौन सा सुनाई?
0: जो भी आपके,
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाए।
0: गाना है ये, दिल पागल दिल मेरा आवारगी।
1: अच्छा, हेलो, आवारगी सॉन्ग सुनना है?
0: जी जी, मिक्स में प्ले कीजिएगा रुखसार, मेरे साथ दोस्त है यूनिस जतोये, उबदार पता नहीं मर है, और अब्दुल जब्बार और रुख से बात कर रहे हैं। हमको आपका इतना शो पसंद है कि बेहद।
1: चले जी, थैंक यू, एंजॉय करें फिर।
0: यो मुझे कसम
1: बिल्कुल, सांस मेरी नहीं है लेकिन मैं गाना सुनवा दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और मुझे ब्रेक पे जाने से पहले रिक्वेस्ट आई थी जी, स्पेशल डेडिकेशन आई थी जो कि मैंने प्ले करनी थी, नजीर थारे जो वहीद भाइयों और शमन भाइयों की निगन्नास का सॉन्ग सुनना चाहते थे, तो सुने साथ फिर हम आवारगी सॉन्ग भी प्ले करते हैं।

नेटवर्क ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास चेहरे के सबको का ब्यूटी क्रीम नरमी ताजगी प्रति चमक सावली रंगत इनमें पाए बेस्ट लुक अके असर आज जीरो कुरान प्रोग्राम तालीम कुरान रोजाना सुबह 7:30 मिनट सिर्फ GFM 88

0: ओके जी, वेरी नाइस सॉन्ग. साथ साथ हमारा सेगमेंट सुर लगाओ, गाना सुनाओ. नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? गाजी खान रिंद भाई, कैसे की ठीक ठाक?
1: अलहमदुल्ला
0: जी, खैर खैरियत है. आप सुनाए, खैर खैरियत है?
1: अल्लाह का शुक्र है. मेरे मैसेज में आप गोट का नाम गलत पढ़ती हो.
0: गोट का नाम गलत पढ़ती हूँ? क्या नाम है आपकी गोट का?
1: गोट का नाम है गुलाब, शहर गुलाब अधिकारी से, गोट बशाम खान रिंद से. आप आशिम खान रिंद पढ़ती हो?
0: भाशम खान रिंद.
1: आप आशिम खान पढ़ती हो, बशाम खान है.
0: ओके, चलें इसको हम दुरुस्त कर लेंगे. और मुझे ये बताएं, गाना कौन सा गाएंगे?
1: गाना आपको बता दें. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, सुख न किसको दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसका लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, सुख न किसको दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसका लिया करो.
0: ओके, और कुछ कहेंगे?
1: आवाज़ जी, बाबर भाई किधर है? बाबर शेख प्रोग्राम करता था, अभी नजर ही नहीं आ रहा है.
0: कौन सा?
1: बाबर शेख करता था सेक्टर से प्रोग्राम.
0: आई डोंट नो, क्यों नहीं कर रहे?
1: पता नहीं, नहीं कर रहा है कोई प्रोग्राम में, आ ही नहीं रहा.
0: चले आएंगे आएंगे. और मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, अगर पता होता तो जरूर बताती. थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.

0: ਸ਼੍ਰੀਆ ਕੁਮਰਸ਼ਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਲਈ ਅਚਾਮਾ ਤੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਸਣੀ ਮੈਂ
1: ओके क्या है इसका टाइटल क्या है
0: दड़का नई दिल खड़ी हुए
1: ओके और सिंगर कौन है
0: मनवर मलाई
1: ओके प्ले करते हैं और कुछ
0: मेरे दोस्त दोस्त है आप लक्ष मेरा मैं डेलो तायर लुंड गवार में बतल शंबाणी हाथे बुला डली जय मेरे सर आए उसको अस्सलाम वालेकुम
1: ओके थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज और जी गाना एंड इसी के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक दोनों के बाद वापस आएंगे आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरान जो मुफाहमती यादाश्त ते मुकम्मल अमल ताईं अमेरिका सां वधीक ॻाल्हियूं करण खां इनकार करे छॾियो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालेबाफ चयो आहे त मौजूदा आबे हर मुलाकातनि जो मक़सद एमओयू तहत कयल वायदनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणाइण आहे। लुबनान जंग जे ख़ात्मे लाइ ईरान, अमेरिका ऐं लुबनान जे गडियल कमेटी ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो आहे। आपना हरमून असांजी ताक़त आहे। मिज़ाइल प्रोग्राम ऐं यूरेनियम वारे मामले ते को बि ठाह न कयो वेंदो।
2: चीनी परे वज़ीर वांग यी ऐं सऊदी हमन सब फैसल बिन फरहान जी बीजिंग में मुलाक़ात, बितरफ़नि लाॻापन समेत हिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि पारां अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल दरामद करण ते ज़ोर भरियो वियो। चीनी परे वज़ीर चयो त ॻाल्हियूं खिते जे अमन जे लाइ अनठर आहिनि। जटादार अमन जे लाइ सऊदीअ सां गॾिजी किरदार अदा करण जे लाइ तयार आहियूं। सऊदी परे वज़ीर चयो त वन चाइना पॉलिसी जी हिमायत कयूं था। चीन सां बितरफ़नि लाॻापन खे हथी वठाइण जा ख़्वाहिशमंद आहियूं।
1: पाक फौज अफगान तालिब रजीम पारां बलूचिस्तान जे सरहद ॾांहुं मोकिलियल चार ड्रोन तबाह करे छॾिया। पाक फौज जो दुश्मन जी हर अगराई जो मुंह टोड़ जवाब ॾियण जो ऐलान। ISPR मूजिब अफगान तालिबान रजीम पारां सरहद पार खां बलूचिस्तान जे हदनि में चार ड्रोन मोकिलिया विया, जिन खे सिक्योरिटी फोर्सिस कामयाबीअ सां निशानो बणाए तबाह कयो। अफगान तालिबान खे दहशतगर्दनि जी सरपरस्ती बंदि करणु घुर्जे। ख़ुदमुख्तियार लाइ ख़तरो बणजंदड़ हर कार्रवाईअ खे नाकाम बणायो वेंदो।

0: कराची जी अदालत में पीआरटी करप्शन केस जी बुधनी, केस में गिरफ्तार अगूणो पीडी जमीर अब्बास अदालत में पेश, जांच ऑफिसर अदालत के मुतमैन करे न सघियो। अदालत जी तलबीअ ते डीजी एंटी करप्शन अदालत में पेश, अदालत चयो त जांच ऑफिसर जी कारकर्दगी बुड़ी आहे।
1: सिंध में ज़राई पाणीअ जी खोट ख़तम न थी, आबादगारनि जो मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज। सिंधड़ीअ में गरहोड़ शाख जे आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। सामारो स्टाफ ते धरणो, पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। मुबारकपुर भरसां मराज़न शाख में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो मुज़ाहिरो, पुछड़ीअ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो।
0: कैरफोर में टिन नौजवानन गुर्बत ए बेरोजगारी सबब जहर पी छो, गैंतियों की हालत में अस्पताल मुंतकिल। गोठ डावरों में लखमीपुर पुटो बेरोजगारी का तंग थी जहर पी आपघात करने की कोशिश कई। गोठ लूनारी में नौजवान सुहेल लूनारी भी गुर्बत ए बेरोजगारी सबब जहरीली दवा पी छी। गोठ हाजाना में नौजवान नादिर अली हाजानो भी बेरोजगारी सबब जहरीली दवा पी आपघात की कोशिश कई। टई नौजवान गणती वाली हालत में अस्पताल मुंतकिल।
1: मंजूराबाद में सन मां अगवा थियल निंगरीअ जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ वारसन ऐं मल्हा बिरादरी जो एहतजाज। निंगरी इरशाद मल्हा जे केस में घुर्बल जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ मल्हा बिरादरी औरतनि ऐं ॿारनि समेत मेन चौक ते धरणो हयो। मुज़ाहिरीन चयो त पुलिस अगवा केस में नामज़द जवाबदार गिरफ़्तार न करे रही आहे, इंसाफ़ कयो वञे।
0: ऐं पडीदन वेझो पठाण फाटक भरिसां ट्रेन जे टकर में नौजवान फौत। सखर खां कराची वेंदड़ ट्रेन जे टकर में नौजवान करण पुट जाड़ोमल फौत थियो। कुंडी में मोटरसाइकिल जो टकर लॻण सबब रोड जे किनारे ते बीठल नौजवान फौत। हादसे में रमज़ान आराई हयाती विञाए वेठो।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6। सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
6: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
7: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
6: जीए एफएम नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: ज़ाहिर मुझे कहते हैं आर जी रुखसार, आपका और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी। और हमेशा की तरह 12 बजे के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारा एक अलग सेगमेंट होता है जिसका नाम होता है हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसमें डिफरेंट हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सैयद जियाउल हसन साहब, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर एट हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन सनी बैंक मरी से इनका ताल्लुक है और आज हमारे साथ मौजूद है एग्जैक्टली लाइव। तो जियाउल हसन को कहिए खुश आमदीद एंड अस्सलामु अलैकुम। ये मैं चेक करूंगी कि आवाज हम तक क्यों नहीं पहुंच रही है करेक्टली। ओके जी जियाउल हसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आपको हमारी आवाज करेक्टली आ रही है?
1: जी जी आ रही है
0: जी। जियाउल हसन साहब कैसे ही? ठीक ठाक हैं आप? और हमें ये बताइएगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो पहली दफा आप आई गेस के आप पहली दफा इंटरव्यू दे रहे हैं जी एफ एम नेटवर्क को, सो आपको बहुत सारा खुश आमदीद और दिल की गहराइयों से हम आपको वेलकम करते हैं।
1: थैंक यू। पर आज जो हम बात करेंगे वो एक बहुत ही आम फ्रूट है एवोकाडो के हवाले से। इसमें ना ये पहाड़ी फलों में एक बहुत उम्दा फल है और ये दुनिया भर में तो इसकी काफी काश्त हो रही है और पाकिस्तान में भी ये काफी ना माना जाता है इसको ना, और पाकिस्तान की जो आबोहवा है उस वसी रकबे पे इसको हम काश्त कर सकते हैं।
0: ओके जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान के अंदर एवोकाडो की ये जो फल है एवोकाडो, इसकी तारीख क्या है, तो आप क्या बताएंगे हमें?
1: एवोकाडो जो है ना, ये सबसे पहले ना मरी में 1955 में इसकी फर्स्ट टाइम प्लांटेशन हुई थी 1955 में, तो 1967 में इसने पहली बार अपना जो फल है ना 12 साल बाद दिया था। लेकिन ये है कि क्योंकि इसका फल निस्बतन नमकीन किस्म का या कड़वा हम कह सकते हैं, तो क्योंकि जैसे पाकिस्तानी मीठे फलों के शौकीन है तो इतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर सका अंटिल 2017। 2017 में फिर लोगों को इसको जब फवायद के बारे में पता लगा इसके, तो लोगों ने फिर इसके बारे में दिलचस्पी लेना शुरू की और इसके बड़े पैमाने पर इसकी काश शुरू हुई।
0: ओके जी, और अगर आपसे पूछा जाए कि एवोकाडो की काश्त के लिए किस किस्म की मिट्टी और मौसमी हालात दरकार होते हैं, तो पाकिस्तान में किस तरीके से एवोकाडो की काश्त की जाती है, किस किस्म की मिट्टी और मौसमी हालात देखे जाते हैं?
1: वैसे तो ये मतलब आप पहाड़ी इलाकों में लगा सकते हैं किसी खास, लेकिन अगर अच्छी मेरा रेती जमीन हो तो इसके लिए बहुत मौजूद है। इतनी जमीन भी अच्छा मतलब अपना सर्वाइवल जो है ना इसका ये कर सकता है। इसको थोड़ी सी नमी वाली जगह भी जो है जिसमें नमी हो, मतलब वाटर लॉग नहीं बात कर रहे, नमी जिसमें हो जमीन में हल्की हल्की, तो वो भी इसके लिए अच्छी है।
0: ओके जी, एवोकाडो की फल की फी एकड़ या फी दरख्त पैदावार की सलाहियत कितनी होती है?
1: अगर हम दरख्त की बात करें तो एक दरख्त जो है जब ये फुल बीरिंग पे होता है तो 1 से 3 मंथ तक ये अपना फ्रूट उठा सकता है। एवोकाडो का जो 1 से 3 मंथ की दरख्त उठा सकते हैं, तो अगर हम इसको एकड़ में करें तो एकड़ में 100 पौधे होते हैं, तो आप यूं कैलकुलेट कर लें कि 300 से 400 मन जो है आप एक एकड़ से हासिल कर सकते हैं।
0: ओके जी, एवोकाडो जो फल है अगर उसकी काश्त हम करते हैं या उसको घरों में या किसी गार्डन में हम उगाते हैं, तो डिफरेंट किस्म के अगर कीड़ों से हम उसको बचाना चाहें या उसको प्रोटेक्ट करना चाहें, तो किन किन एहतियात की हमें जरूरत होगी, ये जरा आप हमें बताइएगा।
1: जब बीमारियों की बात करें तो इस पे एंथ्रेक्नोज जो है फंगस जो है उसका हमला होता है। भूरे रंग के लाल गोल दबे
0: साहब, आपकी
1: तो फल की मक्खी जो है,
0: आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा।
1: बीमारियों में हमारे पास स्कैब है और एंथ्रेक्नोज है, ठीक है। और अगर हम इसकी कीड़ों की बात करें तो फल की मक्खी और थ्रिप्स जो है ये इस पे हमलावर होते हैं, तो उसके लिए हम मिथाइल यूजिनाइल के फंदे लगाते हैं, जिससे ये फल की मक्खी जो है ये कंट्रोल हो जाती है।
0: ओके जी, तो अगर हम घर में इसको उगाते हैं या गार्डन में उगाते हैं तो हमें सेम ही एहतियात की जरूरत होगी, या हमें गार्डन में उगाने के लिए कोई अलग एहतियात करनी पड़ेगी, या घर में उगाने के लिए इसको अलग एहतियात करनी पड़ेगी, तो ये जरा डिफरेंस हमें बताइए।
1: एहतियात यही है कि इसको ना शुरू के 2-3 साल आपने बहुत ज्यादा शदीद गर्मी और शदीद सर्दी से बचाना है। तो गर्मी के लिए यह है कि आप इसकी जो इरिगेशन है या इसको जो पानी देना है वो रेगुलर रखें, और सर्दियों में इसके ऊपर जिस तरह हमने देखा है कि मुझे मतलब पराली वगैरह इसके साथ बांध देते हैं या शापर दे देते हैं ताकि कोहरे से बच सके। अगर ये 2-3 साल सर्वाइव कर जाए शो को शुरू के, तो करिए आगे अपने आपको सख्त मौसम भी बर्दाश्त कर लेते हैं।
0: ओके जी, और पाकिस्तान के किन इलाकों में एवोकाडो की कामयाब काश्त की जा सकती है आपके ख्याल से?
1: अभी हमने इसको जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ये पोटवार का एरिया हो गया आपके पास, सरगोधा का, कसूर का, आपका ये जो लाहौर के साथ साथ एरिया है, इन एरियाज में इसने कामयाबी से ब्रूडिंग दी है। अभी हम मुल्तान में भी इसको ट्राई कर रहे हैं, मुल्तान में इसने सर्वाइवल तो किया है, अभी ब्रूटिंग की तरफ भी उम्मीद है कि जल्द ही चला जाएगा ये। तो हमारा इरादा है कि इसको पूरे पाकिस्तान में काश्त हम फरोग दें।
0: ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जिन इलाकों की आपने बात की, इन इलाकों में एवोकाडो की कौन सी इकसाम पाकिस्तान के लिए ज्यादा मौजूद है?
1: इकसाम हमारे पास जो पाकिस्तान में ज्यादा चल रही है, 3 इकसाम चल रही है, कैलिफोर्निया लॉन्ग, सैलून ब्लू, ये दो इकसाम ये अफ्रीका से आई थी, तो ये चल रही है, यहाँ पे लोकली अडाप्टेड हो गई है। और एक अपने हमारे इदारे ने मरीगोला के नाम से एक नई किस्म मुतारफ कराई थी जिसका फल थोड़ा सा गोल होता है, तो वो भी कामयाबी से काश्त हो रहा है।
0: ओके जी, और अगर बात की जाए एवोकाडो की डिफरेंट इकसाम की जिनको हम खा सकते हैं, तो कौन सी इकसाम ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसान दें, या किन में एहतियात

0: और दिल के मरीजों के लिए भी अच्छा है। इसमें जो अच्छे फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3s हैं, वो होते हैं और इसके मुख्तलिफ दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है।
1: ओके जी, अगर पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इस वक्त काश्त हो रही है एवोकाडो की, तो वहाँ पे एवोकाडो का जो दरख्त है वो फल देने में कितना अर्सा लेता है?
0: नॉर्मली जो इसकी एवरेज है वो 5 से 6 साल में ये फल दे देता है। अपना पहला फल ये 5 से 6 साल में उठा लेता है। वैसे तो कई जगहों पे 3rd साल भी आ जाता है, लेकिन वो 1 या 2 दाने आते हैं। जो प्रॉपर फल है जिसको हम कहते हैं वो 5 से 6 साल में ये शुरू करता है। कई जगहों पे 3rd साल भी इस पे फल आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बहुत कम तादाद में आता है।
1: ओके जी, अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में जहां जहां इस वक्त एवोकाडो मौजूद है और जहां जहां पे इस वक्त बिल्कुल है ही नहीं जिन इलाकों में, तो वहां पे बरामद करने के लिए कोई सलाहियत मौजूद है पाकिस्तान में?
0: मतलब मार्केट की अगर आप फल की बात करें तो मार्केट तो अब हर जगह से अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आपको जो है सेलर्स मौजूद है जो उसको कर रही है। अगर प्लस की बात करें तो वही बहुत सारी नर्सरीज है जो उसके प्लांट्स कर रही है। हमारे पास भी प्लांट्स होते हैं जो हमसे लोग मतलब पूरे पंजाब से लेके जा रहे हैं, और इवन अब तो कराची में भी काश शुरू हो चुकी है।
1: अगर जी अगर चैलेंजेस की बात की जाए जहां जहां पे इस वक्त काश्त हो रही है एवोकाडो की, तो किसानों को या जिन लोगों ने घरों में या अपने गार्डन्स में एवोकाडो लगाया हुआ, उनको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं?
0: चैलेंजेस वही जैसे मैंने बताया है कि बहुत ज्यादा शदीद मौसम जब गर्म हो जाता है या जब कोहरा पड़ता है तो उस वक्त इसको 2-3 साल बचाना पड़ता है।
1: ओके जी, और मजीद अगर आपसे पूछा जाए तो मुझे ये बताइएगा कि एवोकाडो का जो फल है उसमें कौन सी ऐसी इकसाम है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादातर पाई जाती हैं?
0: इकसाम मैंने जैसे बताया है कैलिफोर्निया लॉन्ग और सैलून क्यों ज्यादा चल रही है पाकिस्तान में। ये अमेरिकन वेराइटीज है और ये ना बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ग्रो हो रही है। कुछ ने इम्पोर्टेड भी की है, लेकिन ज्यादातर जो वैरायटी चल रही है वो ये दो चल रही है। और अगर हम फल की बात करें तो इसमें प्रोटीन, चिकनाई, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, विटामिन ए, बी, राइबोफ्लेवन, बहुत सारे इसमें ना न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं।
1: ओके जी, अच्छा अगर इसको कोई एवोकाडो को अपने गार्डन में लगाना चाहे या अपने घर में उगाना चाहे तो तकरीबन कितनी लागत उस पर आ सकती है मैक्सिमम?
0: लागत आप घर को तो आपको पता है कि आपको एक पौधा चाहिए होगा तो इसी जमीन पे ही, तो ज्यादा लागत नहीं है। इसका पौधा जो है वो 250 से लेकर मैक्सिमम, अगर आप प्राइवेट भी बात करें तो 1000 रुपए का पौधा मिल जाता है। और बाकी आपको शुरू के में आपने की गोबर खाद ही डालनी है तो भी आपको घरों वगैरह में आसपास जो जानवर लोगों ने रखे होते हैं पुरानी गोबर खाद, इसके लिए शुरू के 2 साल जो है उसी पे इसकी चल जाती है। और शुरू में इस पे कोई इस तरह की बीमारियां भी नहीं आती कि जो इसको खराब करें, तो शुरू के 2-3 साल तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। जब पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर आपको वो भी माइनर क्वांटिटीज में खाद इसको देनी होती है।
1: अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त जहां जहां एवोकाडो मौजूद है तो वहां पे अगर इसकी प्राइसेस की बात की जाए तो कितनी कीमत में ये आसानी हमें मिल जाता है?
0: अभी तो इसकी प्राइस थोड़ी हाई है क्योंकि अभी ये कितनी ज्यादा पैदावार इसकी नहीं आ रही, तो इसका जो होलसेल का रेट है वो 1500 से 2000 रुपए केजी जा रहा है होलसेल में। और इवन अगर हम बड़े स्टोर की बात करें तो ये 4000 से 3000 केजी।
1: ओके जी, तो मौजूदा इसकी कीमत की अगर बात की जाए तो कितनी कीमत होगी इस वक्त, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा?
0: वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम मतलब 1200 से 1500 कम से कम कर लें, और मैक्सिमम ये 5000 पर केजी तक इसका रेट जाता है बड़े स्टोर पे।
1: ओके जी, अगर आपसे पूछा जाए कि एवोकाडो के इस्तेमाल से कौन कौन सी गिजाएं और मशरूबात तैयार किए जा सकते हैं तो उसमें क्या क्या मौजूद है, कौन कौन सी खाने में गिजाएं और मशरूबात, डिफरेंट किस्म के ड्रिंक्स या फिर कुछ और स्पेशल कुछ अलग, तो
0: एवोकाडो को आप इसका तेल जो है निकाल सकते हैं। एवोकाडो का पाउडर आप महफूज करके इसको बेकरी आइटम में, बिस्किट्स वगैरह में यूज कर सकते हैं अदवियात में। एवोकाडो का जैम जो है आप इसको बना के इसको महफूज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी मिठाई बना सकते हैं, सैलेड इसका बना सकते हैं, चार पड़ा इस एवोकाडो का अच्छा बनता है। और आप इसको मतलब बड़े

0: रहे हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क की आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रो बीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: छा तुम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठाण चाहो था जिते हो जे तहफुज जदी सहूलतों आई मंजूर थेल सिक्योरिटी।
0: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
1: सखर शिकारपुर रोड ते
0: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सामू
1: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थेल
0: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मंसूबो।
1: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
0: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150 गज जा
1: कारोबारी मौके लाइ कमर्शियल प्लॉट 50 गज और 600 गज
0: इतने तरह के मिलन थी जदीद सहूलतों
1: साफ मिठो पानी
0: बिजली गैस
1: 24 कलाक सिक्योरिटी
0: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल और सबका वही गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वेजो है
1: जो रिहायश और सीड़पकारी बिन्हीं लाइ बेहतरीन मौके बनाए तो
0: अजी पेंजे प्लॉट की बुकिंग करायो
1: फौरी कब्जो और फौरी रजिस्ट्री।
0: कॉन्टेक्ट
1: 03009317252
0: and 03132757860 Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar
1: Tamache Mehfooz Mustaqbal a behtareen investment jo behtareen intikhab
2: Yaar macha kya kithe vanya ghar mein baitho hai ha par theek hi nahi shayad mujhe zindagi laayak dawai nahi thi
1: jo bhala cha chua tokhe saaf saaf budha maslo chhai
2: यार एक मसलो हुजे त बुधाया मुंजी ते मसलन जी कतार लगल आहे न भुख सही लगे थी अजे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वनन था अइ सजो डी सुस्ती महसूस थे थी कह कम जो रहंदो ही नाया
1: यार तुजा घणा न बस एक ही मसलो आ
2: एक इहो किए
1: हां तुजो मैदो खराब आ छा तो न बुधवा मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी न हाजमो थिंदो अइ न ताकत मिलंदी
2: त तो मां छा कया
1: सोलो हलाहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स एक कुदरती जुजन मां तैयार कैल कोर्स तुजे जिस्म जो हिस्सो बन जी तुजे मैदे के बिल्कुल ताजो अइ मजबूत करे छरींदो भुख खुली वेंदई खादो सुठे नमूने हजम थिंदई पेट भूख जण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदई
2: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
1: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी आई राबते जे लाइ नंबर भी अथई 03558500616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
3: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमां जे शहर सखर में मैदे जा मसला गैस बदहजमी कब्ज खूनी ऐ बादी बवासी जनाना बीमार समेत बिन मर्जन जो इलाज करे रहयो आहे रोजाना सुबह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नज़द PSO पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड सखर राप्ती जिलाए 03112082600 आई 03337143311
0: सिंह की हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।

वंस अगेन आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरे एक बजे तक का है और आप मुझे सुन सकते हैं जो कि आप सुन भी रहे हैं तो जरूर एक और गाना

0: कॉल्स और मैसेजेस की तरफ मूव करेंगे इसी गाने के साथ. ओके, हमें मैसेज किया है जी, सॉरी कमेंट किया है बहुत सारे लोगों ने. इतने बड़े बड़े कमेंट किसने लिखे हैं ये?
1: बस हो गलती हो गई, थोड़ी जय जल्दी हो गई.
0: मोहम्मद ईदन का कमेंट आया है, कहते हैं आरजे रुखसार आजकल इस भाग दौड़ और डिजिटल जिंदगी में जहां सब लोग स्क्रीन की दुनिया में डूबे हुए हैं, रेडियो की वो पुरानी कशिश कहीं खो सी गई थी, लेकिन आज जब अचानक रेडियो का बटन घुमाया और आपकी आवाज में आवाज कानों में पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया है. सच पूछो तो आपकी आवाज में एक अजीब सा सुकून और मिठास और मैग्नेटिक कशिश है जो सुनने वाले को पहले ही दफा में अपना असीर बना लेती है. अरे वाह, क्या बात है. आरजे रुखसार एक बेहतरीन, सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि वो बिना सामने आए सिर्फ अपनी आवाज के उतार चढ़ाव और अल्फाज के चुनाव से सुनने वाले के दिल में घर कर ले, और आप में ये हुनर मौजूद है. और आज आपका शो सुनकर मुझे ये बात सच महसूस होती है कि आपका बात करने का अंदाज, वो लहजे की शाइस्तगी और दरमियान में हल्की सी मुस्कुराहट, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा सिलसिला बनाता है कि इंसान सब काम छोड़कर बस आपको ही सुनता जाए. गानों की सिलेक्शन से लेकर आपकी बातों का फ्लो, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि पूरे दिन की थकन और ज़हनी दबाव पल भर में दूर हो गया. अरे वाह, क्या बात है. आए आए आए आए, लिखा है कि आप सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत पुराना और मुखलिस दोस्त सामने बैठकर दुख सुख बांट रहा हो. आज के इस शो में मुझे रेडियो सुनने के उस सुनहरे दौर में वापस भेज दिया जहां लोग आवाज से इश्क करते थे. आप लाजवाब हैं, सदा खुश रहें. लव फ्रॉम हर्ट. थैंक यू सो मच मोहम्मद ईदन, बहुत खूबसूरत कमेंट, बहुत खूबसूरत अल्फाज आपके.

0: GAFM 88 Network सिंध की आवाज।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील महासे और बेजानपन, आप सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-786-343 and 0315-450192। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अमां जे बारे जे बेहतरीन करियर आए रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आए मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आए फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिलाओ जो शानदार ऐलान। हाने पंजे बारे के बनायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM आए 5 साल DPD जने ते 2 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV, CMW, ICNA ऐं ख़ास गाल मुस्तहिक शागिर्दन लाइ स्कॉलरशिप्स पिण मौजूद आहिनि, जॾहिं त 2 सालनि जे कोर्सेज़ में दाख़िलो बिल्कुल फ्री आहे। सहूलियतूं ऐं मञता असां वटि मौजूद आहे स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस, AC क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे। दाख़िला महदूद आहिनि, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। फोन नंबर्स 0715635642 and 0300-83-11207। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
1: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
2: DHMS सिंध,
1: RHMP इस्लामाबाद,
2: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
1: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
2: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
1: कमर दर्द,
2: अर्कुन निसा,
1: जोड़ों का दर्द,
2: हेपेटाइटिस,
1: वजन की कमी या ज्यादती,
2: बे औलादी,
1: गंजपन का मुकम्मल इलाज
2: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
1: टाइम
2: हफ्ते से जुमेरात
1: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
2: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
1: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
2: राब्ते के लिए
1: 0326-22-00-440। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: Do I sound a little cheesy? Where's the money? Where's the money? Where's the money?

वेलकम बैक वंस अगेन. लास्ट एंड लकी कॉलर्स रिसीव करेंगे जी. और बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस आप लोगों के रिसीव होते जा रहे हैं मुझे, जो कि हम इंक्लूड करते जाएंगे. हाँ, कमेंट नजीर खुसो हमें सुन रहे हैं, अली अकबर बिरोही हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू. अच्छा, नेक्स्ट कॉलर लेंगे, लास्ट एंड लकी कॉलर्स की तरफ मूव कर रहे हैं. हेलो ओके, रिकॉल.

0: beautiful star 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं. ज्वाइन करने के बाद कॉल कर रहे हैं. सो हम प्ले करेंगे एक और गाना और ये जो एक और गाना होगा ये होगा बहुत ज्यादा खूबसूरत. सो उसको सुनेंगे एंजॉय करेंगे साथ साथ लास्ट लकी कॉलर्स जो कि हम रिसीव करेंगे. नेक्स्ट कॉलर हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम हाल बिल्कुल ठीक है. थोड़ा सा लाउडली बात करें
1: जी.
0: थोड़ा सा लाउडली बात करें.
1: समझे नहीं आपका.
0: ओके कहाँ से बात कर रहे हैं कौन बात कर रहे हैं.
1: गाजी खान रिंद.
0: ओके गाजी खान रिंद भाई मुझे ये बताइएगा. ओके कॉल ड्रॉप हो गई भाई की और मैं चाह रही हूँ कि लास्ट लकी कॉलर में ले लूँ लग जाए कॉल. एक और ट्राई. हेलो
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: कर रहे हैं.
2: अमन बच्चल बात कर रहा हूँ.
0: हम सुनते हैं भाई.
2: जी जी प्रोग्राम में सुन.
0: ओके अच्छी बात बताएं.
2: जी अभी नहीं सुन रहा हूँ मैं.
0: फिर कभी सुनते हैं.
2: पहले मैंने प्रोग्राम आपका मैं
0: अभी नहीं सुन रहे हैं. चले लास्ट में कॉल लगी है. आज की कोई अच्छी बात बता दें.
2: आज की अच्छी बात. आज की अच्छी बात है सबसे भलाई करनी चाहिए.
0: ओके
2: और भलाई जो है अभी जो लोग हैं तो वो भलाई बिल्कुल. आवाज ओपन है क्या मेरी.
0: नहीं आवाज बिल्कुल सही आ रही है आपकी.
2: आवाज मेरी जो है वापस हो रही है पता नहीं कैसे.
0: वापस हो रही है. अब बोले. अब बोले.
2: जी जी भलाई करनी चाहिए मगर बात यह है कि भलाई करने वाले लोग भलाई समझते हैं मगर भलाई के मदाई करें भलाई के बदले में खुदा भलाई करेगा. एक गाना सुना है थी पखी माँ प्यार वारे शहर में उड़ंदो रहा जित रहे महबूब जो महबूब पे फिरंदो रहा.
0: ओके टाइटल बताइएगा इस गाने का. पखी
2: थी पखी माँ प्यार वारे शहर में उड़ंदो रहा यूट्यूब में बिल्कुल मिल जाएगा. अब्दुल गफ्फार तबस्सुम की शायरी है. मेरे ख्याल में बरकत अली फाज में है.
0: ओके मौला की आवाज में आ रहा है.
2: नहीं ममताज
0: मौलाई
2: नहीं है ये बरकत.
0: थैंक यू. ओके जी गाना मिल चुका है. गाने के साथ ही हम ले

0: अमेरिका ऐं दुआ नायब सदर जे डी विलिस जी दवा आहे. नायब सदर जे डी विलिस चयो आहे त वॉशिंगटन ऐं तेहरान में टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं शेड्यूल मूजिब जारी आहिनि. तेहरान सां ॻाल्हियूं कामयाब थियूं त तेहरान बुनियादी तौर ते तब्दील थी वेंदो. ॻाल्हियूं नाकामी कारवाई मलींदो.
1: यादाश्त ते मुकमल अमल ताईं अमेरिका सां अमल दरामद खे यकीनी बणाइण आहे. लबनान जंग जे ख़ात्मे जे लाइ कयो आहे अबनाए हरमूज. असांजी ताक़त आहे मिज़ाइल प्रोग्राम यूरेनियम वारे मामले ते.
0: चीनी परडे॒ही वज़ीर वांग यी ऐं सऊदी हम मनसिब फैसल बिन फरहान जी बेजंग में मुलाक़ात. बिन तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं. बिन्ही अॻवाणनि पारां अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल दरामद करण ते ज़ोर भरियो. चीनी परडे॒ही वज़ीर चयो त ॻाल्हियूं खिते जे अमन लाइ अंटर आहिनि. जटादार अमुन लाइ सऊदीअ सां गॾिजी किरदार अदा करण लाइ तयार आहियूं. सऊदी परडे॒ही वज़ीर चाइना पॉलिसी जी हिमायत कयूं था. चीन सां ॿिन तरफ़नि लाॻापाइण जा ख़्वाहिशमंद आहियूं.
1: पाक फ़ौज अफ़गान तालिबान रिजीम पारां बलोचिस्तान जे सरहद ॾांहुं मोकिलियल चार ड्रोन्स तबाह करे छॾिया. पाक फ़ौज जो पाक फ़ौज दुश्मन जे हर अगराई जो मुंहुं

0: जवाब ॾियण जो ऐलान कयो आहे। ISPR मूजिबि अफ़गान तालिबान रिजीम पारां सरहद पार खां बलोचिस्तान जे हदनि में 4 ड्रोन्स मोकिलिया विया, जिन खे सिक्योरिटी फोर्सिस कामयाबी सां निशानो बणाए तबाह कयो। अफ़गान तालिबान खे दहशतगर्दनि जी सरपरस्ती बंदि करणु घुर्जे। ख़ुदमुख़्तारी ऐं सलामती जे लाइ ख़तरो बणजंदड़ हर कार्रवाई खे नाकाम बणायो वेंदो।
1: कराची जी अदालत में BRT करप्शन केस जी ॿुधणी। केस में गिरफ़्तार अॻोणे PD ज़मीर अब्बास अदालत में पेश। जांच आफ़ीसर अदालत खे मुतमिन करे थी सघियो। अदालत जी तलबी ते DG एंटी करप्शन अदालत में पेश ज़मीर अब्बास जी जिस्मानी रिमांड में 3 ॾींहनि जी वाद अदालत सवाइ। अदालत सवाल कयो त छा रुगो PD जी सही सां पेमिट थी वेंदी आहे। 3-4 माण्हुनि जी सहिन बाद पैसा जारी थींदा आहिनि, ॿिया माण्हू किथे आहिनि, ठेकेदार किथे आहिनि।
0: सिंध में ज़रई पाणी जी खोट ख़तम न थी। आबादगारनि जो मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज। सिंध जे में गिरोड़ शाखे जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। सामारो स्टाप ते धरणो। पुछड़े ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। मुबारकपुर भरिसां मिर्ज़ा शाख में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो मुज़ाहिरो। पुछड़े ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। फ़कीराबाद में बि धकड़ शाख जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो ऐं धरणो। धकड़ शाख जे पुछड़े ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो।
1: खैरपुर में 3 नौजवाननि बेरोज़गारी सबबि ज़हर पी छॾियो। गणती जोगी हालत उठ डांवरो में लखमीर फलपोटो बेरोज़गारीअ खां तंग थी ज़हर पी आपघात करण जी कोशिश कई। ॻोठ नूनारीअ में नौजवान जे गुरबत ऐं बेरोज़गारी सबबि ज़हर पी दवा पी छॾी ज़हरीली दवा पी छॾी। ॻोठ हाजाणा में नौजवान नादिर अली हाजाणो बि बेरोज़गारी सबबि ज़हरीली दवा पी आपघात जी कोशिश कई।
0: अहमदाबाद में सनम अगवा थियल निगरी जा जवाबदार गिरफ़्तार।
1: परींदर वेझो पठाण फाटक भरिसां ट्रेन जे टकर में नौजवान फोत। सक्कर खां कराची ईंदड़ ट्रेन जे टकर में नौजवान करण पुट जाड़ो मल फोत थियो। कुंडरीअ में मोटरसाइकिल जो टकर लॻण सबब रोड जे किनारे सां बीठल नौजवान फोत। हादसे में रमज़ान आराई हयाती विञाए वेठो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: छा तव्हां जो ख़्वाब आहे त मुस्तक़बिल में हिकु कामयाब डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी बणिजो? छा तव्हां मयारी तिबी तालीम सां पंहिंजे कैरियर खे नई ऊचाइन ताईं पहुचाइण चाहियो था? त पोइ ख़ुशख़बरी आहे अव्हां जे लाइ। हाणे सखर में सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPT प्रोग्राम में दाख़िला जारी आहिनि, जेको लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस ॼाम शोरो लम्स सां इलाहाक थियल आहे। हिते तव्हां खे मिलंदी जदीद तिबी तालीम, तजुर्बेकार ऐं क़ाबिल फैकल्टी, जदीद लेबॉरेटरीज ऐं हिकु महफ़ूज़ बहितरीन तालीमी माहौल। ऐं सभ खां वॾी ख़ुशख़बरी, सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फी सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया। हाणे मयारी तालीम हर शागिर्द जी पहुच में। महदूद सीट्स मौजूद आहिनि, तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई क़दम वधायो। ऐं हा, फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत पिणु मौजूद आहे। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 071-5635-642 ऐं 0300-8311-207। छा तव्हां बि पंहिंजे ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था, जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
6: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
5: सखर शिकारपुर रोड ते,
6: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
5: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
6: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो।
5: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
6: रिहाइशी प्लॉट्स 80, 120, 150 ऐं 200 गज़ जा,
5: ऐं कारोबारी मौक़नि लाइ कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज़ ऐं 600 गज़।
6: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं,
5: साफ़ मिठो पाणी,
6: बिजली, गैस,
5: 24 कलाक सिक्योरिटी,
6: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, हीउ मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे, जेको

0: रिहाइश ऐं सीड़पकारी बिन्हीं लाइ बेहतरीन मौक़ो बणाए थो।
1: अॼु पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
0: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
1: कॉन्टेक्ट
0: 03009317252
1: एंड 03132757860। हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर।
0: तव्हां जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन इंतिखाब। खुशख़बरी खुशख़बरी अव्हां जे ॿारनि जे बेहतरीन करियर ऐं रोशन मुस्तक़बिल जे लाइ सखर जो मशहूर ऐं मञियल इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ सखर पारां नर्सिंग ऐं फिज़ियोथेरेपी जे शोबनि में नए सेशन लाइ दाख़िलाउनि जो शानदार ऐलान। हाणे पंहिंजे ॿारनि खे बणायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM ऐं 5 साल DPD, जॾहिं त 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV, CMW ऐं CNA ऐं ख़ासि ॻाल्हि मुस्तहक़ शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप्स पिण मौजूदु आहिनि, जॾहिं त 2 सालनि जे कोर्सेज में दाख़िलो बिल्कुल फ्री आहे। सहूलियतूं ऐं मान्यता असां वटि मौजूदु आहे। स्टेट ऑफ आर्ट कैसी क्लास, एडिट लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे। दाख़िला महदूद आहिनि, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। फोन नंबर्स 07156 35642 ऐं 03008311207।
2: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अवां जे शहर सखर में मेदे जा मसला, गैस, बदहज़मी, कब्ज, खूनी ऐं बादी बवासी, ज़नाना बीमार समेत बिन मर्ज़न जो इलाज करे रहियो आहे। रोज़ाना सुबुह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल। एड्रेस: अली होम्योपैथिक क्लिनिक, वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप, नज़द PSO पेट्रोल पंप, रेस कोर्स रोड, सखर। राब्ते जे लाइ 03112082600 ऐं 03337143311।
0: ज़मींदार भाइरनि खे सिंध पेस्टिसाइड तर्फ़ां अस्सलामु अलैकुम। जीअं त हर साल वांगुरु हिन साल बि सिंध पेस्टिसाइड आबादगार भाइरनि लाइ ज़रई माहिरनि जी निगरानी में ख़िदमत में पेश करे थो कमंद जे फसल लाइ तमामु घटि ख़र्च में जदीद टेक्नोलॉजी जा नवां भाण ऐं ज़िंक, जेके कमंद जी फी ज़रेब पैदावार वधाए सघनि थियूं। इन खां अलावा एस ईसा, रॉडल्स ऐं रावी कंपनीअ जूं फुटिन जे जीत जी दवा, सारिन लाइ ज़िंक, गंदगाह जी दवा ऐं ज़हर, कमंद लाइ इम्पोर्टेड पोटाश 25 किलो में ऐं पोटाश 20 लीटर झरियूं पिण मौजूद आहिनि। भाइरो, इन महांगाई जे दौर में बनबर डीलर खां बचो। सिंध पेस्टिसाइड एजेंसी ते अचो। प्रोप्राइटर श्याम लाल प्रदीप कुमार, पनवाकिल। राबते जे लाइ 03004-87-14-039। एड्रेस: सिंध पेस्टिसाइड एजेंसी, नर्स हबीब बैंक, पनवाकिल।
3: जोड़न जे सूरत सफ़ा मारे छॾियो आहे।
4: अदातन जो इलाज छो नथो कराई?
3: इलाज कराए कराए थकिजी पियो आहे।
4: अदा, हिन सूर जो इलाज ख़ात्मा दर्द दवा सां मुमकिन आहे। जी हाँ, ख़ात्मा दर्द हिकु अहिड़ी दवा जेका सूर खां ॾे निजात। सूर चाहे जोड़न जो हुजे, पठन जो हुजे, चेल जो हुजे या घिंटिया जो, कुन रग जो हुजे या वरी जिस्म जे कंहिं भी नंढे वॾे सूर जे लाइ आज़मूदा दवा आहे। 7 ॾींहनि जी दवा सिर्फ़ 450 रुपयनि में। ख़ात्मा दर्द मिलण जो हंधु बेड़ी चौक, नादरा ऑफिस जे साम्हूं, अल नूर दवाखाना, रोहड़ी। राब्ते जे लाइ 03055800616। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
1: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
0: DHMS सिंध,
1: RHMP इस्लामाबाद,
0: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
1: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
0: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
1: कमर दर्द,
0: अर्कुन निसा,
1: जोड़ों का दर्द,
0: हेपेटाइटिस,
1: वजन की कमी या ज्यादती,
0: बे औलादी,
1: गंजपन का मुकम्मल इलाज
0: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
1: टाइम:
0: हफ्ते से जुमेरात
1: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
0: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
1: पुलिस हेडक्वार्टर चौक, सखर।
0: राब्ते के लिए
1: 03226220040।

क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सुधर आली बॉस आपके होटो पर 440 की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपकी होटो पर 440 की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ब्यूटीफुल से कलाम के साथ, तो बहुत ही प्यारा सा कलाम सुन के और जो ना वापस आकर आप लोगों को बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरत होती रहिए।

बेइज्जती का बेहतरीन जवाब फासला है। ना जवाब दो, ना बहस करो, ना ड्रामे में पड़ो। देखो सादगी क्या है, जब को मजरूह करे तो उसका जवाब देना जरूरी नहीं होता। बाज़ोकात खामोशी, फासला और अपनी इज्जत का तहफ्फुज़ सबसे बड़ा रद्द अमल और खुद भी का।

0: CA2 मिल रहा है एक्ने का सोल्यूशन और व्हाइट एज ब्यूटी सोप है, व्हाइट एज फेस वॉश है, व्हाइट एज लोशन है, व्हाइट एज हेयर रिमूवल लोशन है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम है एंड डी स्किन फेस वॉश है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि इजिली आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। ना मिलने की सूरत में आपने डायल करना है 03-1579-0595। ओके जी, तो नंबर के ऊपर रابطہ जरूर कीजिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं। आपको कहीं ऐसा ना हो कि भाई सोचें कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे परचेज करेंगे, ये क्या होगा, कैसे होगा, तो बस आप इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। चाचा खालिद जुड़ी जो सबसे पहले हमारी पोस्ट पर मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम चाचा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं, मजे में। और फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। बोला अलैहिस्सलाम मदद कहते प्लीज प्लीज मूछने को दियो जलायो वा, जोर केडो हवा लगायो वा, आए हाय भलो गानो हलाईंदासी। उन खां अलावा चाचा खाले तमाम सलाम दिना हिन इरफान सियाल साहब के, सो ओके वेलकम। और हैं जी गुल मोहम्मद रिंद हमारे साथ, गुल मोहम्मद रिंद भाई आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। और उसके अलावा हैं यहाँ पर हमारे साथ भक्त अली सियाल भाई, आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। चाचा खालिद कहते हैं प्रोडक्ट्स सेंड मी स्पेशली डी स्किन फेस वॉश। ओके ओके वो आपको भेज रहे हैं, क्या बात है, ये मोहब्बतें वाकई कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं और बढ़नी भी चाहिए, अच्छी बात है। और हजारखंड जो तो ये मर्सद मौजूद ही, वालेकुम असलम हजार भाई, छाला तांजो खुश आयो। अच्छा तां असांजे ये प्रोग्राम जो इंतजार कयो पया, मोहब्बतूं आए तां भाईरन जो। मोलाई मुजाहिद बुजार मर्सद मौजूद हैं टूप चूसल से, वालेकुम असलम, मैं ठीक हूं जी, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है। और आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। हजार भाई कहते हैं कि हम आपका शो शौक से सुनते हैं, थैंक यू थैंक यू। और फहीम कहते हैं चलिए आप लोगों की साथ वाली कन्वर्सेशन चल रही है। ओके जी ओके ओके। और साथ साथ किशोर भाई आ चुके हैं, सलाम अदा खुश आयो, चंगा भला सब मजे में, ताँ बदा की आयो मजे में, चाक चंगा भला। और मोहम्मद जमान आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू शो मोहम्मद जमान भाई। और हेंसी मोहम्मद ताहिर लुंड भाई, प्लीज प्ले लगी तो प्यारा जे काबिल। ओके आई ट्राई, तुम जो गानों हलाने की कोशिश करना सी। साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद है, मिठो देरो से तुम असा के ज्वाइन कर मोहब्बतू आए, मिठो देरो में मिलन था कोन ही प्रोडक्ट जी बुधाया थी, मुख्य बुधाए जो प्यारा भा। उन अलावा फहीम हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और हैं जी आप जितने भी लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। मोतिया सेठानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम असलम। और अनवर भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, सबको वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और साथ साथ डायल करते जाइए 03-1579-0595। और ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, टॉपिक को फॉलो कीजिए और बताइए कि एक आपके सामने जंगल है जहाँ पर अंधेरा भी है और रोशनी भी है दोनों एक साथ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।
1: FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM 88 की आवाज,
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठाण चाहो था जिते हुए तहफुज जदीद सहूलतों मंजूर थियल सिक्योरिटी
4: तपोय भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
3: सखर शिकारपुर रोड ते
4: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सामू।

0: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
1: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
0: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
1: कमर दर्द,
0: अर्कुन निसा,
1: जोड़ों का दर्द,
0: हेपेटाइटिस,
1: वजन की कमी या ज्यादती,
0: बे औलादी,
1: गंजपन का मुकम्मल इलाज
0: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
1: टाइम
0: हफ्ते से जुमेरात
1: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
0: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
1: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
0: राब्ते के लिए
1: 0326-22-00-440।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GFM 88 की आवाज।
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

स्वागत है, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क। हमारे साथ हैं यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट ए। सुनने वाली तमाम समातों को वेलकम इन कोशा मदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया कि आप कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। आज आप लोगों से सवाल पूछा है, उसके ऊपर आप बात भी करते जा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम का टॉपिक यूं है कि आप मुझे बताइए कि आपके सामने एक जंगल है, ठीक है, वहाँ पर रोशनी भी है और अंधेरा भी है, दोनों एक साथ। हाँ जी, दोनों एक साथ है, ये कैसे मुमकिन है बताइए जल्दी से मुझे। और अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो 888 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। ओके जी, तो हमारे प्रोग्राम का सब इंतजाइए और बताइए आप ही हमारे साथ मौजूद हैं और खूबसूरत बनना चाहते हैं। ओके जी, तो खूबसूरती भी दुनिया यहाँ पर ऐसा है ना कि खूबसूरती हासिल करना आजकल के दौर में मुझे लगता है कि आसान काम है, लेकिन अगर देखा जाए जो प्रोडक्ट्स आपको बताए जाते हैं अगर वो उस तरह के नहीं हो जैसी आपकी स्किन है तब थोड़ा सा मसला बन जाता है। और हम कोई मसला ना हो, अच्छा ग्लो करती रहे, आप अपने इस्तेमाल करना है वरी प्रोडक्ट्स का और प्रोडक्ट्स में आपको सारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी जरा खुलासा करते हैं कि ये जो जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती के लिए क्यों जरूरी है। तो अगर हम व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं या फिर व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को मैं बता दी चलूं, तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है जो कि नाइट क्रीम है, व्हाइटनिंग नाइट क्रीम है। इसका इस्तेमाल आप रात के टाइम करेंगे और साथ साथ ये टीनेजर जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है उनके लिए है। अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जल्द जो है ना वो फ्रेश होती है, आपकी स्किन को गोरा रंग मिल जाता है। इसके नुकसान से एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है और मिल्क मौजूद है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि नेचुरल अज्जा से मिलाकर जो है ना वो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे आपकी खूबसूरती जो है वो खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी। अक्सर औकात हम ये सोच रहे होते हैं कि खूबसूरती की हिफाजत जो है ना वो करना मुश्किल काम है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, आप सही सोच रहे हैं। तो खूबसूरती की हिफाजत अब आप जो है ना कर सकते हैं जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप रात के टाइम करने वाले हैं यानी कि सोने से पहले, और अपना फेस वॉश करेंगे, जाहिर सी बात है। तो फेस वॉश करेंगे तो आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी सोप भी अवेलेबल है एंड व्हाइट एश फेस वॉश भी अवेलेबल है। अब ये दोनों चीजें हैं, अगर आप साबुन लगाते हैं तो आप व्हाइट एश ब्यूटी साबुन लगाएंगे, अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो आप व्हाइट एश का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल जी, व्हाइट एश ब्यूटी सोप जो है वो एवोकाडो एलोवेरा और मिल्क से तैयार किया गया है। अगर फेस वॉश की बात आती है तो व्हाइट एश का जो फेस वॉश है वो विटामिन सी से तैयार किया गया है। और विटामिन सी जाहिर सी बात है आप अच्छे से जानते हैं कि स्किन के लिए आपकी ब्यूटी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है। तो व्हाइट एश का जो विटामिन सी से तैयार किया गया फेस वॉश है या कि स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है और साथ साथ इतना क्रीमी फेस वॉश है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अपना दिल खुश रखिए और स्किन को भी खुश रखिए और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए। और साथ साथ वो इतने प्यारे प्यारे लोग जो कि भाई एक्ने की वजह से परेशान बैठे हैं, एक्ने की वजह से अगर आप भी परेशान बैठे हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अब आपके पास मौजूद है डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब। डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब आप लोगों के लिए मार्केट में आ चुका है। इसकी सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ये सिर्फ आपके चेहरे के एक्नी को नहीं खत्म करता बल्कि आपके चेहरे पर जो डार्क सर्कल्स हैं, निशानात हैं एक्नी के, या फिर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इतने सारे निशान अगर आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब यूं जनाब चुटकियों में उन्हें खत्म कर देगा। आपकी स्किन बन जाएगी क्लियर, क्लीन और ब्यूटिफुल, क्योंकि ये आयुर्वेदिक फार्मूला है। आयुर्वेदिक फार्मूले का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सारी चीजें नेचुरल ऐड की गई हैं और जड़ी बूटियां ऐड की गई हैं जो कि आपकी स्किन को जो है ना वो फ्रेश लुक देती हैं, आपकी स्किन की हिफाजत करती हैं और आपके चेहरे पर जितने मसले हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जैसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, रात के टाइम ही कीजिएगा और लगाने से पहले अपना फेस वॉश कीजिएगा लाजमी, अच्छे से फेस को क्लीन कीजिएगा, हाथों को क्लीन कीजिएगा, देन अप्लाई कीजिएगा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब। और साथ साथ यहाँ पर बारी आती है मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की, यस जे हो व्हाइट एश लवली क्रीम की। ये प्रोडक्ट पता नहीं क्यों मेरे दिल के इतने करीब है ना कि मैं अगर सोचती हूँ ना, मेरे पास जितने अराउंड देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बाबा ऐसा कोई प्रोडक्ट ना हणंदा आयो, कोई प्रोडक्ट अगर तां ना हणंदा आयो सफा तां सादा आयो पांजी जिंदगी खे सो प्या, तो तमाम की व्हाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमाल मुझे चवण ते एक मरत करण घुर्जे, छो तो व्हाइट मिन सां मिलो आहे हिन जे अंदर टीह

ओवर द प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से इस्तेमाल करते रहिए खूबसूरत होते रहिए। और अनवर भाई कहते हैं कि जेकर को मानू मुखा नफरत करे तो वो हुन जो मसलो आए मुझो न बिल्कुल या सोच होजन घुर्जी अमाजी दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम स्वीटी कैसी है ठीक ठाक है। किशोर भाई कहते हैं डिप्रेशन। हाँ भाई डिप्रेशन ही चल रहा है। कुर्बान अली कमरानी हमारे साथ मौजूद है। गुलाब गुल बहार नाइस प्रोग्राम ओके जी थैंक यू आपको वेलकम कहा जाता है। इमदाद अली बलोच भाई वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं ठीक ठाक है। और मोहम्मद ताहिर लुंड भाई वालेकुम अस्सलाम। विलेज वलीदाद खान लुंड नजद सेठारशाह से प्रोग्राम लाजवाब आए तवाजो सो मोहब्बतू प्यारे भाजू प्रोग्राम बुध पाया तवा तवा के प्रोग्राम वाले पयो पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं कि ऐसे मुमकिन है कि व्हाइट एज लवली क्रीम शो है जहां सिद्रा मुस्कान रोशनी है और समथिंग इज डार्कनेस व्हिच इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ योर शो सिडू जी योर टॉपिक आंसर। अच्छा बात समझ आ गई क्या कहना चाहते हैं। चलिए

प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, कंजूसियां मत किया करें. सही है. और मुझे बताइए कि आपके सामने एक जंगल है जहाँ पर रोशनी भी है अंधेरा भी है दोनों एक साथ, कैसे? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से. अच्छा, फहीम कहते हैं कि टापर के दिन के वक्त जंगल में दरख्त इतने गहरे होते हैं, घने होते हैं कि जमीन पर अंधेरा होता है, लेकिन जहाँ जहाँ पत्तियों के बीच से खुला है वहाँ से रोशनी की धूप की किरणें नीचे गिर रही हैं, तो अंधेरा और रोशनी दोनों साथ साथ. सही है भाई. अच्छा, इकबाल आशरी में सुन रहे हैं खुश आमदीद प्यारे भाई. दर्द दिल कहते हैं तेरी मुस्कुराहट में छुपी है कोई बात, वरना यूं ही कोई मेरे दिल पर राज नहीं करता. अल्लाह जाय उदा.

ओके क्या बात है किशोर भाई, यदि ट्रैफिक मेरे ख्याल में ये तब मुमकिन है जब जंगल बहुत घना हो, जहाँ सूरज की रोशनी तो हो पर जमीन तक सिर्फ अंधेरा और साए पहुँचे, या फिर रात के अंधेरे में जुगनुओं की रोशनी हो, दोनों मुझे पता नहीं क्यों ऐसे आ रही है। सही है, आप जवाब देते जाइए। और जहीर अब्बास हमारे साथ हैं, भाई गुड आफ्टरनून। उदास लड़की हमारे साथ हैं, क्या बात है, आप बड़े दिनों के बाद मोहतरमा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। वालेकुम अस्सलाम, मौलवी सलामत, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं।

अब्दुल खालिक गबोल भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं बाजी अभी तक हमारे सिटी में नहीं अवेलेबल हुए प्रोडक्ट्स, भाईजान जो नंबर बताया जा रहा है उसके ऊपर एक मरतबा राबता करके देखिएगा, ठीक है। उनको बताइए कि आपके एरिया में नहीं मिल रहे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और आपने डायल करना है 03-15-799-0595। अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं। ओके जी, अब्दुल रजाक भाई आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। निदली कहती हैं कि ओ वाओ जी, स्किन फेस वॉश भी है क्या, मैं जरूर यूज करूंगी। यस, आप यूज करके देखिएगा, अब हर जगह अवेलेबल हो चुका है डी स्किन का फेस वॉश, तो आप परचेज कीजिएगा। अच्छा, वीरू मल मेघवार हमारे साथ कहते हैं नाइस शो, आप कैसी हैं सिद्रा, मीरपुर खास से सुन रहे हैं आपको, बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास वालों को वेलकम कहा जाता है। और उसके अलावा जी हमारे पास एक और गाना है जो कि हम आपको सुनाएंगे, ये वाला गाना।

ओके जी, आज मैंने कॉल्स भी लेनी है तो आके कमेंट्स में जल्दी से खत्म कर लेती हूँ। और निदली कहती है कि मैं कुछ दिन क्या गुम हो गई, ये क्या से क्या हो गया। इसलिए कहती हूँ मत घुसाया करें। किशोर भाई मानते हैं ना। अब्दुल रजाक केसर में सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर अब्बास भाई तवान जो मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुधो पया। और हजार खान जतोई भाई कहते हैं टॉपिक दिन में सूरज की रोशनी और रात में चांद की रोशनी होगी ना जंगल में। हाँ सही सही, समझने में थोड़ा वक्त लगा। मिदड़ी कहती है कि शीजा सुनो तो, कल मैं भाई के साथ आ रही थी घर और भाई का हाय अल्लाह क्या बात है। किशोर भाई बड़े फेमस हो गए मुझे ये लग रहा है आजकल। एम अंसारी कहते हैं एग्रीड, पागलपंती में अपना मजा है, शऊर इंसान को बहुत ही अजियत देता है। ओ यह गाल का यवनी। अली अकबर ब्रोही भाई में सुन रहे हैं सकरेंट से, आपको वेलकम। मोहम्मद मीरन जखरानी भाई, जेकब अब्बासी, मैं सब मौजूद ही खुश आमदी।

ओके जी, लुबी भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम कहती हैं सिडो जाने क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ। तो नाइस यो सिडो, कोई अच्छा सा गाना मेरे नाम कीजिएगा। ओके जी, डन हो गया।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सुन रहे हैं और साथ साथ इदम हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम कहती हैं कि मुझे दिलबर दोस्त। हाँ जी हाँ जी ठीक है, आप टेंशन मत लिया करें इतनी ज्यादा। मीरपुर खास अब्दुल्ला महरी वालेकुम अस्सलाम बाजी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है और सॉन्ग सुनाए हो मेरा चन्ना का। ओके और उनखां अलावा मीरपुर खास अब्दुल्ला महर और शुए महर हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू। प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ हैं फ्रॉम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, पाक आर्मी से हैं आप हमारे साथ, स्वीट शो है और कहते हैं इस वीक के सारे शोज एक से बढ़कर एक थे। ओके जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आई एम ग्लैड। और ये कहते हैं हमारे साथ मेरी छोटी बहन कुलसुम भी आपका प्रोग्राम सुन रही है और मेरी अम्मी भी आपका प्रोग्राम सुन रही है और गुजारिश कर रही है सॉन्ग चलाइएगा। चलिए मैं कोशिश करूंगी आपका गाना चलाएंगे, लेकिन आपने एक ही मैसेज को इतनी मर्तबा शेयर कर दिया कि मेरा पूरा जो पैनल है ना वो भर गया है, तो एक मैसेज को एक मर्तबा शेयर किया करें। और थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद हैं। व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, आपकी सिस्टर भी और आपकी अम्मी जान भी खूबसूरतियां होनी चाहिए भाई जान। और डायल करते रहिए 03-15-799-0595। ओके जी प्रोग्राम सुनते रहिए और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा न्यूज ब्रेक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।
1: अब आप सुनेंगे GAFM, आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM 88 की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

पोजिशन में आहे इराणी कारवाई येते अमेरिका ईरान जो मुफ़ाहिमती यादाश्त ते अमेरिका सां वधीक ॻाल्हिबात चयो आहे त मौजूदा मुलाक़ातुनि जो मक़सदु एमओयू तहत कयल वाइदनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणाइण आहे। लबनान जे ईरान अमेरिका ऐं लबनान जी गॾियल कमेटी ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो आहे। आबदा हरमूद असांजी ताक़त आहे। मिज़ाइल प्रोग्राम ऐं यूरेनियम वारे मामले ते को बि ठाहु न कयो वेंदो। चीनी परदेह वज़ीर वांग यी ऐं सऊदी हमनसब फैसल बिन फरहान जी बीजिंग में मुलाक़ात। बितरफ़न लाॻापन समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि पारां अमेरिका ईरान मुफ़ाहिमती यादाश्तनामे ते अमल दरामद करण ते ज़ोर भरियो वियो। चीनी परदेह वज़ीर चयो त ॻाल्हियूं ख़िते जे अमन जे लाइ अणचर आहिनि। जटादार अमन जे लाइ सऊदीअ सां गॾिजी किरदार अदा करण जे लाइ तयार आहियूं। सऊदी परदेह वज़ीर चयो त वन चाइना पॉलिसी जी हिमायत कयूं था। चीन सां बितरफ़न लाॻापन खे हथी वठाइण जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। ईरान शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जे आख़िरी रस्मुनि जे शेड्यूल जो ऐलान करे छॾियो। ईरान में 6 जुलाई ते आम मोकल जो

0: ज़मीर अबासी जे जिस्मानी रिमांड में टिन ॾींहनि जी बाद पीडीए जी सही सां पेमेंट थी वेंदी आहे। टिन चइनि माण्हुनि जे किथे आहे? सिंध में ज़रई पाणी जी खोट ख़तम न थी। आबादगारनि जो मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज। सिंधरीअ में गिरोड शाख जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। सामारो स्टाप ते धरणो। पुछड़े ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। मुबारकपुर भरसां बिज़ा शाख में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो मुज़ाहिरो। पुछड़े ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। फ़कीराबाद में बि धकड़ शाख जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो ऐं धरणो। धकड़ शाख जे पुछड़े ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। कैरपुर में टिन नौजवाननि गुरबत ऐं बेरोज़गारी सबब ज़हर पी छॾियो। गणती जोगी हालत में अस्पताल मुंतकिल। ॻोठ डामरो में लक्ष्मी फुलपोटो बेरोज़गारी खां तंग थी ज़हर पी आपघात करण जी कोशिश कई। ॻोठ नूनारी में नौजवान सुहेल नूनारी बि गुरबत ऐं बेरोज़गारी सबब ज़हरीली दवा पी छॾी। ॻोठ हाजाणा में नौजवान नादिर अली हाजाणो बि बेरोज़गारी सबब ज़हरीली दवा पी आपघात जी कोशिश कई। टई नौजवान गणती वारी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मंज़ूराबाद में सनम अगवा थियल निंगरी जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ पारसन ऐं मलाह बिरादरी जो एहतजाज। निंगरी इरशाद मलाह जे केस में घुरबल जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ मलाह बिरादरी औरतुनि ऐं ॿारनि समेत मेन चौक ते धरणो हो। ॿुधाइनि जो त पुलिस अगवा केस में नामज़द जवाबदार गिरफ़्तार न करे रही आहे। इंसाफ़ कयो वञे। शहदादपुर मां हिंदू नारी मुबैना तौर अगवा वारसनि जो थाणे अॻियां एहतजाज। एनसी दाख़िल। सवाई रोड जी रहवासी नारी गौरी धीउ जामनदास जी गुमशुदगी ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। हिंदू पंचायत पारां कारोबार बंदि करे थाणे अॻियां मुज़ाहिरो कयो वियो। अॻवाननि चयो त असांजी नियाणी खे राति देरि सां अगवा कयो वियो आहे। खेसि बाज़ियाब कराए वञे। थारूशाह में प्रिया कुमारी ऐं उजाला परवीन सोलंकी समेत गुम थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी जे लाइ एहतजाज। दरबेलो में नौजवान इतिहाद पारां मुज़ाहिरो कयो वियो। अॻवाननि जो चवण आहे त अॻवा थियल उजाला परवीन सोलंकी खे टे महीना ऐं प्रिया कुमारी खे पंज साल थी विया आहिनि। सिंध हुकूमत नियाणियुनि खे बाज़ियाब कराए।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। GAFM 88 की आवाज।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: छा तव्हां जो ख़्वाबु आहे त मुस्तक़बिल में हिकु कामयाब डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी बणिजो? छा तव्हां मयारी तिबी तालीम सां पंहिंजे कैरियर खे नई ऊचाइनि ताईं पहुचाइण चाहियो था? त पोइ ख़ुश ख़बरी आहे अव्हां जे लाइ। हाणे सखर में सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPT प्रोग्राम में दाख़िला जारी आहिनि, जेको लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस ज्ञामशोरो लम्स सां इलाहाक़ थियल आहे। जदीद लेबोरेटरीज ऐं हिकु महफ़ूज़ बहितरीन तालीमी माहौल। सभ खां वॾी ख़ुशख़बरी, सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फ़ीस ऐं फ़ीस सेमेस्टर सिर्फ़ 5 में। महदूद सीट्स मौजूद आहिनि, तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई क़दम वधायो। ऐं हा, फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत पिण मौजूद आहे। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो: 07156356 42 ऐं 03008311207। छा तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था, जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
5: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
4: सखर शिकारपुर रोड ते,
5: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
4: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
5: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो।
4: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
5: रिहाइशी प्लॉट्स 80, 120, 150 ऐं 200 गज जा,
4: ऐं कारोबारी मौक़े लाइ कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज ऐं 600 गज।
5: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं:
4: साफ़ मिठो पाणी,
5: बिजली, गैस,
4: 24 कलाक सिक्योरिटी,
5: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे,
4: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौक़ो बणाए थो।
5: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो।
4: सॉरी कब्ज़ी 00939317252
5: एंड 03132757860। हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
4: तव्हां जे महफ़ूज़।

0: Show enough.
1: अच्छा
0: सुठो कयो तव्हां कॉल कई. कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदा?
1: दुश्मननि खे सलाम.
0: दुश्मननि खे सलाम दुश्मन. चलो थैंक यू सो मच जी. अच्छा माना समझी
1: वियासीं.
0: कमेंट कंदियूं आहिनि सची ॿुधायो. इहो तव्हां मूंखे ताजो में विझी छॾियो. इहे केर आहिनि दुआ जूं कज़िन? चलो उन्हनि खे ॻोल्हे वठूं था काॾे वेंदियूं भला. और थैंक यू सो मच दुआ तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई. इलाही सुठो लॻंदो आहे तव्हां सां हमेशह ॻाल्हाए. ऐं ख़ुशि रहो. ऐं नेक्स्ट कॉल बि वठंदासीं. कॉलिंग नंबर 2221321.

0: તો મુકેશ સમજી ને કોણ આવે.
1: ચલો માં કોશિશ કે નામ
0: છોકરે છોકરે એકડે કે તેમ ઓને નંબર કદી.
1: ચલો માં કોશિશ કે નામ સિંધી મે ભી તાકે નંબર બુદાયા.
0: તમામ કલાક પ્રોગ્રામ કંદા આઉં 24 કલાક પ્રોગ્રામ તાં યો બુધનો રેકોર્ડ કરે
1: 24 કલાક નિંદ ન કંદાયો છા.
0: કોણ કંદાયા તમામ સંકો ઘણો ઉંગા બુધને.
1: ચલો ચલો નિંદ કંદા કયો નિંદ ભી જરૂરી આ ઇન્સાન ચ લાય મુકે બુદાય તા સને પ્રોગ્રામ તો બુધો પ્યાસે ને પ્રોગ્રામ નો નાલો તાં કે છે તો વાહ વાહ ડી સ્કિન બ્યુટી ક્રીમ ઇસ્તમાલ કઈ થવા યાર ગો પ્રોગ્રામ બસ બુધન આયો બુધન જા શોકીન આયો મટિયારી વંજો વઠી જો ઠીક
0: આહે
1: દોસ્તન કે યાદ કંદા
0: નજરો આહે જવાબ
1: જી જી
0: चलो
1: ठीक है अहमद मुगल हलाइंदस मोहब्बत आन प्यारे भाजू मटियारी का तुम प्रोग्राम बुध पे 24 कलाक अस प्रोग्राम बुधन माशाल्लाह जो अड़ा मानू कॉल कहन वरी बुधी करे सुठो लगन आए जो मोहब्बत आन प्यारन भावन जो नेक्स्ट कॉल वठू था कॉलिंग नंबर आए 0332123221888 हेलो अस्सलाम
2: वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम केर मौजूदा हेलो लगी तो पो कि माई जी कॉल चलो ओके सो नेक्स्ट कॉल वठना सी नेक्स्ट कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम केर मौजूद आस से गड आवाज कटे तो भा तू नालो बुदायो पांजो वराए ओके ओके प्रोग्राम बुधो पिया जी जी खैर खैर प्रोग्राम बुधो पिया अच्छा मुखे बुधायो तो तहां वाइट एज ब्यूटी
0: क्रीम
1: ओके
0: ओके
1: डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो था वर्दी अथव जी जी याद क्यों याद क्यों याद क्यों याद क्यों दोस्तन के चलो ठीक है ओके वटजो वटजो दोस्तन की याद क्यों जल्दी जल्दी
0: जी
1: जी के भा थैंक यू सो मच प्रोग्राम में तुम कॉल कई ढो तकड़ो माशाला दो और कॉलिंग नंबर आई 0332123228 डस डस तुम कॉल लगी पे सो नेक्स्ट कॉल वटूं जिसमें केयर मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केयर अस आवाज कट जी वो नालो बुधाए पंजो बुधाए अस्मा अस्मा तां खुश आयो प्रोग्राम बुधो पे अस्मा ओके मुझे बताएं कि आप टॉपिक के ऊपर क्या कहेंगी अस्मा
3: टॉपिक अंधेरा होगा तो सर चांद होगा ना चांद की रोशनी होगी
1: और अच्छा इतनी ज्यादा रोशनी कैसे हो सकती है कि सब कुछ नजर आए क्लियर क्लियर
3: मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है बहुत प्यारी
1: थैंक यू सो मच थोड़ी सी और तारीफ कर दे मेरी
3: आप सभी गुस्सा लीजिए ना बहुत प्यारी
1: थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत
3: मेरे लिए ना फोन प्ले करें
1: कौन सा
3: गाना लड़की हुई जाते
1: वो लड़की है या जादू ओके ओके
3: आपके शो में अक्सर आप प्ले करते हैं
1: जी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना आपके लिए लाजमी लगाएंगे ओके कौन सी दोस्तों को याद करेंगी और मुझे ये बताएं कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है
3: मैंने आपको बताया था मैंने कुछ भी इस्तेमाल ही नहीं करती
1: अच्छा कुछ इस्तेमाल
3: अल्लाह ताला ने बहुत
1: वो तो ठीक है इसका हल और सोल्यूशन भी बताती हूँ की उम्र के साथ साथ इंसान की स्किन को प्रोडक्ट की जरूरत होती है जी जी मैं पहचान गई थी आपको लेकिन मुझे आवाज कट होने की वजह से ऐसा लगा कि आपने अपना नाम अस्मा बताया जी अच्छा क्या बात
3: बात ही नहीं मैं कंफ्यूज हो गई थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था आपकी आवाज
1: चले ये अच्छी बात है कि आपकी दोबारा भी कॉल लग गई चले
3: ऐसी
1: ओके थैंक यू सो मच यास्मीन बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी ऐसी आप कॉल ट्राई करती रही आपकी कॉल मिलती रही और हमसे बात करती रही और हमें अच्छा लगता रहे और आप भी कॉल कर सकते हैं कॉलिंग नंबर है 0332123228 सो नेक्स्ट कॉल नेक्स्ट कॉलर देखेंगे कौन मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

तो वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और जनाब और लाड़काना के खूबसूरत लोगों को ब्यूटी रहे हैं नहीं, ये लेकिन आप इस्तेमाल करा रहे हैं विशेष ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी करती रहिए और डायल करती रहिए 03-57-00-595। अच्छा नंबर मां तव्हांखे हिकु दफ़ो न सिंधी में ॿुधायां थी, नंबर आहे 0315। अच्छा नंबर तव्हां लाज़मी डाल कयो, तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते ब्यूटी प्राइम तव्हां नंबर ते राबितो करे सघो। मौजूद ख़ुशामदीद।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो उधर।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान को दुनिया कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद बुला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इजहार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: आगे बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को छलनी की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा।

0: तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट लॉस्ट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत, बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: क्योंकि मैं ग्रीन

0: पख़्तूनख़्वा ऐं बलोचिस्तान समेत मुल्क जे मथां इलाइक़नि में चौमासे जा वसकारा शुरू थी विया। हेठाई वारा इलाइक़ा पाणीअ हेठि बलोचिस्तान जे इलाइक़े सोप में तूफानी बरसात सबब घर जी छित किरी पई। ॿ ॼणा फौज चार ज़ख़्मी। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में बरसात सबब शाहराह रेशम समेत ॿिया रस्ता पाणी हेठि। नदियुनि ऐं बरसाती नालनि में बि बोड वारी सूरत हाल। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे इलाइक़े वाड़ा में विंड किरण सबब ॿ ॿार फौत थी विया, टे ज़ख़्मी, 27 घर मुतासिर। मौसमियात खाते पारां सिंध में बि 3 ऐं 4 जुलाई ते बरसात जे कती थियल। नाज़रीन, हीअ हुई हिन वक़्त ताईं जूं ख़बरूं। हाणे वठंदासीं शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक खां पोइ मां प्रोग्राम ॾिसी सघंदा इनसाइट विथ नाज़िया मीर। ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ,

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: DA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: देखिए इक्तदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो बुधंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: स्लोगन।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने,
0: और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की,

0: के भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारिम को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, वो लड़की उसको नहीं मिलेगी, खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: yeah!

0: पर्दा पर्दा जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे।
3: इसकी मोहब्बत से वाकिफ, तो मेरी मोहब्बत से वाकिफ क्यों नहीं है वो?
1: आशा,